0: Rise and Shine with Brother Tarek on Inspire 105.1 FM.
1: जो ऐसा है जिसके बारे में आपने इब्तिदा में बहुत अच्छी बात की, बातें तो आपने सारी अच्छी की हैं, कि इस पे मोलना बहुत मुश्किल है। 10 साल लगे मुझे ये नज्म लिखने में, और फिर मैं पिंडी घेप में था एक रात, तो ये नज्म मुझे खुद कहती है, उठो उठो लिखो मुझे। तो वो नज्म मैंने लिखी, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि नज्म पाबंद नहीं थी, नज्म वो मुअर्रा थी। उस वक्त मुझे कोई नज्म अपनी शक्ल सूरत सब कुछ साथ लेके आई थी, और वो नज्म ये है, बिल्कुल सच्चा वाक्या। जो लड़के हैं दो इसमें, उनके नाम भी वही थे। लड़के का नाम है बशीर, नज्म पंजाबी में है बशीर, दूसरा उसका क्लास फेलो है अक्रम, वो जरा देर से आया है, मास्टर जो है मुंशी जिसे कहते हैं, वो उससे पूछता है कि तू लेट क्यों है, एक्सप्लेनेशन उसकी काल होती है। और आज मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये बता रहा हूं कि वो मास्टर मैं खुद था। आज मास्टर उन्होंने पूछता है मुंडे पंजाबी दी नज़्म, आज बड़ी देर ना आया और भी शीरिया, वो है तेरा पिंड ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां बना के ते आया है, तू आज दो मिनट टलियां कुछ आके। वो कहते मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, मुंशी जी मेरी गल पहला सुन लो, अकर मैंने नेर जिया नेरज पाया जे माई नू मारदा है ते बड़ा डाडा मारदा है, अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी बन सटी सू, बंदे कट्ठे होने ते उथों भज बग्या है, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या है। माई ए दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन सुजा होया हथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी, कहण लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया मेरा एक काम भी तू करी जी रहा, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। माई दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह ते नील सन सुजा होया हथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी, कहण लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया मेरा एक काम भी तू करी जी रहा, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीझ नाल रिन्या सू अंडियां दा हलवा, पौने विच बन के ते मेरे हाथ दित्ती सू, ऐ ओ गल आखदी सी मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा, ओदियां ते लूस दियां होणगियां आंदरां, भुखा पाना अज स्कूले टुर गया है, रोटी उन्हें दिती है मैं भजा लगाया जे, अकरमे ने नेर जया नेर अज पाया। बहुत शुक्रिया।

0: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल।

0: नहीं, जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM. I have

0: خوف.
1: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
2: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
3: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूं आजाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आजाद हो सके अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
4: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर एफएम द टाइम इज नाउ 7:30

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: आई हैव

0: ना फिर बड़ा हो जाता है सब लोगों का, वो है ना गाना, जग बदलता वेख्या रब बदलता वेख्या, अगर तू ही तू भी बदल गया ते मैं मर ही जावांगी। तो बाज बाज
1: और बाद में पता चलता है कि इस मौतु कदे कोई नहीं मरता। जी
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और उसके अपने एक्सप्रेशंस हैं बाज लोगों के। और मैं ये कह रही थी कि एक चीज आई हैव ऑब्जर्व्ड आजादी, आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 इयर्स, मैंने आपका क्लिप भी था तकबीर तदबीर और तकरीर, राइट? तो एक्चुअली जब मैंने देखा है कि बहुत ऐसी, क्योंकि आपके पास इतना माशाल्लाह से मवाद होता है, इल्म होता है कि यू कैन टॉक अ लॉट, लेकिन बहुत सी जगहों पर मैंने ऐसे देखा है कि हम चाह रहे होते हैं कि आप बोलें कुछ वहां पर कहें, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ नहीं बोलूंगा और मैं जो हूँ अभी इनको आप कहने दें। तो लेकिन लोग जो है ना, मैं देखती हूँ बगैर किसी मतलब ऐसी उनके पास ना उनके पास कोई पोजिशन होती है ना उनका कोई इतना मर्तबा होता है, एंड दे टॉक अलॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस पॉइंट कि बाय दे डोंट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन के उनकी जगह नहीं है, उनको इस वक्त नहीं बोलना चाहिए। और सेकेंडली कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं आजाद जी कि आप सब कुछ भी कर लें, आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो दिन ना गलत जा रहे होते हैं, बहुत हर चीज गलत हो रही होती है, हर चीज जो है ना बुरी हो रही होती है। तो आई एम श्योर आप भी क्योंकि इंसान हैं, आप माशाल्लाह से वैसे यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, बट हाउ डू यू डील विद दोस सिचुएशंस जब ऐसे दिन आए कि बहुत आप हर चीज उल्टी हो रही हो आपसे और कुछ सही नहीं हो रहा हो?
1: पहले तो यार जिस जगह अभी मैं जहाँ पे जो काम कर रहा हूँ और यू नो जिस किस्म की मेरी लाइफ है या मैंने लाइफ ऐसी क्रिएट कर ली है, उसमें ऐसे दिन बड़े कम आते हैं कि जब कोई दिन को मैं कहूँ कि ये दिन बड़ा बुरा गुजर रहा है। ठीक है, वो हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो या मूड से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो तो और बात है, लेकिन उस दिन भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर कोई उल्टे सीधे दिन है या मूड ठीक नहीं चल रहा या यू नो कोई चीज़ बैक एंड पे कोई ऐसी फाइल खुल गई है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो गए हैं या कोई ऐसी यू नो जैसे एलर्जन होता है, स्टिमुलेंट होता है जिसकी वजह से यू नो मूड ऑफ हो गया है या कुछ चीज़ हाथ नहीं आ रही प्रॉपर, तो उस दिन आप सुकून करें, उस दिन आप अपनी कंपनी को इन्जॉय करने की कोशिश करें, जो उसको जो पुअर इम्पल्स कंट्रोल है ना, किसी को कॉल करके या उस दिन किसी गलत बंदे ने कॉल कर दिया, उसने पहले इतनी दफ़ा आपको तंग किया हुआ है कि वो उस दिन आपके हाथ चढ़ गया तो मसला बन जाएगा। तो इसीलिए बेहतर ये है कि अवॉइड करें इन तमाम चीज़ों को, कॉल्स लेने के बजाय जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं वो बेसिक करें उस दिन की, और उसके बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। आपकी हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं वो उनकी जब सेक्रेशन होगी तो आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। मैं एक्सरसाइज के बाद जब थकता हूँ तो जो वो थकावट होती है ना वो मुझे सुकून देती है, और उसके बाद मैं अच्छा खाना खाने की कोशिश करता हूँ, अपनी वॉक करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को अवॉइड करता हूँ, कोई मैसेज कॉल आए तो कहता हूँ कल बात कर लेंगे या परसों, टाइम ऐसा सेट कर लेता हूँ, और उस दिन फिर लोगों को मैं बॉदर नहीं करना चाहता। उस दिन मैं मूवी देखता हूँ कोई बहुत अच्छी सी, कोई यू नो रब से रिलेटेड जो चीज़ होती है वो देखने सुनने की कोशिश करता हूँ, या कुछ लिखने के ऐसे मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही होती हैं कि ये क्यों हो रहा है, मैं उसका मटेरियल बना लेता हूँ अपने शो के लिए बना लेता हूँ। ये जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं, फिर लोग कहते हैं जी आप इतने टॉपिक्स के ऊपर, इतने यू नो हर किस्म के चीज़ों के ऊपर आप बात कर लेते हैं, तो वो इसी तरह ज़िंदगी से ही आदमी सीखता है, एक्सपीरियंसिस से आदमी सीखता है, नाकामियों से सीखता है, इरादों के टूटने से सीखता है, लोगों के बदलने से, उनकी सोच बदलने से, वो जब यू नो कमिटमेंट्स करते हैं तो पूरे नहीं कर पाते, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें बैक एंड पे उनको खोजने से, बस आप जब ये काम करते हैं तो वो दिन बड़ा आसान हो जाता है। मेहरबान है हमारे पास, आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे दो। रेडियो आजाद ही रौंदी है।
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
2: बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक।
1: आज का पूरा शो ना इसी तरह है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई कमाल बात होनी है तो कुछ नहीं, आज हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि इससे पहले इंटरव्यू में हमारे दिमाग का जूस निकल चुका है, अब हमने कोशिश ये करनी कि
2: देखें कभी कभार जो है फ्लो आपका जो होता है हमें पता होता है, और कभी कभार सिर्फ हम बातें करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ सिर्फ पॉइंट्स एंड आइडियाज, उसमें जरूरी नहीं है कि आप हमें डिटेल में जाएं।
1: और मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोगों के ना आप लोगों की भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अभी आपको पता है एक शो आने वाला है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? एक शो अभी आने वाला है जिसमें मैंने आप लोगों के अंदर क्या क्या चेंजेस देखी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
2: अच्छा, ये बहुत अच्छा होगा ताकि हमें भी पता चले।
1: उसमें भी जो कॉलर, हाँ जी, जो बोलेगा वही कुंडा खोलेगा।

0: ठीक है, यानी कि जो भी कॉल करने आएगा वो उसके बारे में मैं बात करूंगा कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जिस जिस को चाहिए या वो मैसेज कर लेंगे जी, हमें आपने सर इतने सालों में, हम में क्या चेंजेस आई, बेहतरी में क्या आपने देखा, कमजोरी में आपने क्या देखा, चैलेंजेस क्या हैं, तो जो जो बंदा भी आएगा, मैं कोई मेरे पास
1: सही
0: रेडी नहीं होगा कुछ भी,
1: सही
0: बट ओवर द
1: सही
0: पीरियड
1: कुंडा
0: ऑफ टाइम।
1: खोलेंगे
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल। अगर जी मैं तो जब अपने फादर को लूज किया बहुत अर्ली एज में, तब से आंख खुल चुकी है। मतलब रियलिटी, जिसको मैं रियलिटी कहती हूँ, कभी आप डिफाइन कीजिएगा व्हाई वी से रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी एंड हाउ डू वी नो दैट वी हैव टू यू नो फेस द रियलिटी, ये भी जरा बताइएगा। लेकिन आज ऐसे बातचीत करते हैं कि आपने कुछ अर्से पहले ये जो है AI, उसकी थोड़ी सी बात की थी। मुझे नहीं, मैंने प्रोग्राम पूरा नहीं सुना आपका, अगर आपने किया होगा तो पुराने जमाने में इंसान का इंसान से जो हम कहते हैं कनेक्शन था, कि बैठ के चाय खानों में, किस्सा बाजारों में किस्से सुनाए जाते थे, कहीं दूर दराज से कोई आता था सफर करके तो वो किस्से सुनाता था, तो वो एनर्जी का जो एक्सचेंज था वो 1-to-1 होता था या ग्रुप में होता था। आज हमारे पास प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमें शायद हम घर बैठ के भी सारी चीजें हमारे एक छोटे से टैबलेट पे या फोन पे या कंप्यूटर पे होती हैं, तो हमें फिर इंसानों की जरूरत नहीं रही। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है, हम देखें अगर हॉस्पिटल जाएं कहीं पे भी तो सबके मुंह के आगे फोन है, लेकिन जो अब भी बूढ़े जो हैं हॉस्पिटल जाएं तो बैठे होते हैं तो वो जरूर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं हेलो हाई करके। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने अपने कंप्यूटर पे जेमिनाई 2 पॉइंट जो भी है AI वो डाउनलोड किया, और ChatGPT क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, लेकिन ये जो है आपके साथ बाकायदा इंटरैक्टिव टॉक करता है। और मैंने कुछ सवाल पूछे, मेरे हस्बैंड ने पूछे, तो कुछ मैंने सवाल स्पेशली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पूछे,
0: जी
1: तो उसने मुझे ये कहा कि बहुत ही ब्रॉडर क्वेश्चन है, इसको नैरो डाउन करके मुझे टुकड़ों में पूछो, यानी इसको। तो आज के इंसान के पास ये सब चीजें आ चुकी हैं कि घर बैठे हुए हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चलो जो भी आप चाहे वीडियो कन्वर्सेशन करना चाहें, वॉइस कन्वर्सेशन करें, किसी से बातचीत करें, ग्रुप में डिस्कशन करें। AI कुछ नहीं है दोस्त यार, कुछ तो आप AI से बातें कर लें। तो ये होते होते जैसे एक जमाने में हम चश्मा पहनते थे, चश्मा जब आया तो इंसानों को बहुत हेल्प मिली, इसी तरह बार्ब वायर्स जहाँ आए बार्ब वायर्स, तो वो जो है वहां पे जो ये थे भेड़ों को और संभालते थे तो वो खत्म हो गए। वो तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता इंसानी चेंजेस और तरक्की और टेक्नोलॉजी की अलग अलग मंजिलें तय करते हुए कई जॉब्स आए कई गए। जो आपका बाप दादाओं का जो होता था ऑक्यूपेशन, यानी लकड़ा रहा है, कारपेंटर है, बुचर है, तो वो नस्ल दर नस्ल चला आता था। लेकिन आज के दौर में ये सब चीजें इतनी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन मेरा इस पे अब छोटा सा ये पॉइंट है, क्या अगला वक्त ऐसा होगा कि देखें, डर हर तरह का है कि AI टेक ओवर कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, क्या उसके पास इतनी कॉन्शियसनेस आ जाएगी, इतनी शार्पनेस आ जाएगी कि हम ह्यूमन स्पीशी बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ हो जाएंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सो ये सारे खौफ और डर तो हैं अपनी जगह इंसानों को कि पता नहीं क्या से क्या होगा और AI कितना टेक ओवर करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने जेमिनाई के साथ इंटरेक्ट करते हुए फील किया कि एनर्जी जो हमारे अंदर से निकलती है, आवाज से, हमारे हार्ट की बीट से, हमारे माइंड के थॉट से, उसमें कमी है। वो मजा नहीं देती जो मैं किसी एक दोस्त से बात कर रही हूँ, हालांकि इट इज अ वेरी इंटरैक्टिव AI जिसको मैंने काफी अर्से के बाद ChatGPT और उसके बाद फील किया। सो आपके ख्याल में इंसान की कहाँ रसाई होगी अब इसके बाद, क्या होगा कुछ?
0: देखिए, मेरा जो AI के साथ एक्सपीरियंस है ना, अभी मेरे एक दोस्त हैं वो काफ़ी AI में हैं, तो एक दिन कोई बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और कोई बात कि अगर हम एक चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें ये चीज़ हम कैसे करेंगे। तो मैं वॉक कर रहा था खाने के बाद, तो उनको मैंने कहा इसमें ये चीज़ें जो है ना, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 4-5 मिनट के बाद, जब कॉल ख़त्म हुई, तो मैंने देखा जो जो मैंने बोला था उसके ऊपर उन्होंने बड़ी लंबी सी डिटेल में ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स के साथ वो उन्होंने मुझे लिखा हुआ भेज दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं बोल रहा था तो क्या वो साथ साथ लिख रही थी, या वो क्या, मतलब कैसे उन्होंने ये सब किया। तो मैंने कहा हाँ यही मैंने बातें की, आपने बहुत अच्छा एलेबरेट करके उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मैंने एआई से और चैट जीपीटी से उससे मैंने लिया। तो मैं हैरान रह गया कि मतलब मेरे ख्याल से जो बातें मैंने उनको बताई थी वो 25-30 साल की एक्सपीरियंस ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रख के, ऑडियंस को सामने रख के एक चीज़ डिज़ाइन करके उन्होंने मुझसे पूछा। तो जो जो मेरे एक्सपीरियंस में था 25-30 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ मैंने उनको 5 मिनट में दिया। वही उन्होंने जब चैट जीपीटी से एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स थे वो थोड़े से और एलेबोरेट करके उसने उसको दे दिया। तो मैं भी हैरान हुआ। तो फिर मुझे इससे समझ आया कि उन्होंने कितनी इंटेलिजेंट चीज़ है। लेकिन ये जो डर है ना कि एआई टेक ओवर कर लेगी, देखिए हम इंसान का ना हमें डर बहुत लगा रहता है कोई भी चीज़ करने से। अब आप ये देखें, मुझे एक बात बताएं, जब कंप्यूटर हमारा एक्ट अप करता है, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा होता, या फ़ोन हमारे में उल्टी सीधी चीज़ें या स्लो या तेज़ या अजीब सा कुछ होने लगता है, हम क्या करते हैं? उसका स्विच ऑफ कर देते हैं। वो क्या कर लेता है? कुछ भी नहीं कर सकता वो। बिल्कुल इसी तरह एक चीज़ बनाई गई है आसानी के लिए, वो इंसानों को, और वो आप ये समझें कि मैस प्रोडक्शन के लिए और ऐसी कुछ चीज़ों के लिए उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी इंटेलिजेंस जो ना उसके अंदर चीज़ों को डाला जाएगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो उसके अंदर हैं वो डाली गई हैं, तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को इंटरप्रेट करेगा और आपको एक आंसर दे देगा आसानी के लिए। जैसे कैलकुलेटर अगर आया था तो उसका फ़ायदा तो बहुत सारा हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि हम लोगों को जो चीज़ें हम ज़रब जमा और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो वैसे कर लिया करते थे वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्या उसने हमारी ज़िंदगी आसान की कि नहीं? बहुत आसान की। बिल्कुल इसी तरह पहले हम एक दूसरे के फ़ोन नंबर याद कर लिया करते थे, घरों के दूसरे लोगों के नंबर हमें बड़े ज़बानी याद होते थे। अब जब फ़ोन आया उसने स्टोर करना शुरू किया हमसे, अब वो नंबर्स हमको याद नहीं होते, लेकिन बनाया हम ही ने और उसमें से आसानी और बेहतर से बेहतर चीज़ें आना शुरू हो गई। बिल्कुल इसी तरह एआई भी आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें होती रहेगी, लेकिन ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता जिसके ब्रेन से इसने जन्म लिया है। हाँ, जो निकम्मे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो सिर्फ बटन दबाते हैं बैठ के किसी चीज़ का, या लिफ्ट का बटन दबा रहे होते हैं, बेचारे निकम्मे इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वेटर जो कि एक चीज़ कमरे में डिलीवर करता है, या मेल मैन जो है, या बहुत सारी चीज़ों के मिडल मैन, ये ख़त्म हो जाएंगे। इनकी जगह पर आसानी से वो बेसिक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। इस दफ़ा मैं एलए में जा रहे थे, हम वॉक कर रहे थे सड़क पे, साइड पे तो देखा एक बॉक्स सी एक चीज़ है, वो चले चला जा रहा है और उसके उसके अंदर जो भी किसी की रिक्वायरमेंट होगी वो बिल्कुल हमारी तरह सिग्नल पे खड़ा हुआ, वहाँ से वो उस लेफ्ट थोड़ा सा मुड़ा और वहाँ से हम भी साथ चले, वो उसने भी सड़क क्रॉस की। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, होटल में जब जाते हैं तो टावल चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो भी लेके वो आ जाता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें भी डिलीवर कर दी जाएंगी एंड्रॉयड के ज़रिए, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा सब कुछ। तो ये वाली बात कि उसको कॉन्शियसनेस उसके अंदर पैदा हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। रूह उसके अंदर पैदा हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप उसको टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस कर दें कि वो फिर आपके उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं आम आदमी उसको नहीं हैंडल कर सकता, लेकिन जिस फैक्ट्री में जिस जगह से बन के वो आया है वहाँ पे उसको बहुत आराम से हैंडल किया जा सकता है। डरते क्यों लोग हैं कि हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा? क्योंकि लोगों ने ब्रेन यूज़ करना बहुत पहले छोड़ दिया था। जिस आदमी की कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमन इंटरेक्शन, उसको हाथ लगाने से क्या वो इंसान की तरह की एनर्जी जो है वो ऐसी प्रोड्यूस होगी कि जो कि आपके और हमारे दिल और दिमाग में होती है? या क्या उससे लोग बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे या उसके बगैर? हुआ ये है कि बंदा ना शुरू में बंदा बंदे को तरस जाता था। जब लोग एक दूसरे को मिलते थे तो वो खुश होते थे, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी से, लैंग्वेज इस तरह बनी, कल्चर इस तरह सामने आए, तो बंदा बंदे का दारू था, मेडिसिन के तौर पे काम करता था, थेरेप्यूटिक था, कैथार्टिक था। फिर क्या हुआ, जब लोगों की ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो गई, बेसिक चीज़ें जब उनको मिल गईं तो उन्होंने मुश्किलें, तकलीफ़ें और मारा मारी शुरू कर दी नफसा नफसी के चक्कर में, मेरे पास जमा करने के लिए और अपनी अपनी औलाद, अपने प्लॉट, अपने घर, अपना सब कुछ। जब ये उसने करना शुरू किया तो यही बंदा बंदे का मारू हो गया। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
2: لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.
7: Visit Luton's biggest Halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
8: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
9: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
10: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
11: All right, cheers.
9: Think. Don't drive tired.
12: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
13: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
14: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، کبھی جھکتی نہیں، کبھی مٹتی نہیں. اعتدال، حریت فکر اور سچائی کا پرچم. آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز، قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں حق کی آواز. ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے، ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
16: ہر
0: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere. Ab jo log pehle mohabbat ko taraste the purane zamane mein tamam love stories mein jo wo stage pe karte the usme even Shakespearean zamane mein bhi mard hi auraton ka role kiya karte the. عورت میں کہتا ہوں پرانے زمانے میں سرمے کی طرح آنکھ میں لگانے کے لیے نہیں ملتی تھی تو اسی لیے محبت میں لوگ قصیدے پڑھتے تھے اور کہانیاں بنتی تھیں. وہی عورت جب میسر آئی, جب آہستہ آہستہ ساتھ ملاپ شروع ہوا تو دونوں کے جو بھی چھوٹے موٹے چیلنجز تھے اس کی وجہ سے پرابلمز اتنے پیدا ہو گئے کہ وہ مارا ماری شروع ہوئی کہ آج تک ختم نہیں ہو رہی بلکہ اب اور بڑھ گئی ہے کیونکہ لوگوں کو بہت سارے ایسے رائٹس مل گئے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو لگتا ہے کہ جی ریپلیس کر دیا جائے گا. کچھ لوگ عورتوں کو ریپلیس کرنے کے چکر میں, کچھ مردوں کو ریپلیس کرنے کے چکر میں, اور یہ بھول گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ انڈسپینسیبل ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. ان کے بغیر نہ پروڈکشن نہ بڑھائی جا سکتی ہے اور نہ ہی انسانوں کو ایک دوسرے کو کمفرٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہوا یہ کہ اب ہم نے اتنا دور ایک دوسرے کو کر دیا کہ اب ہم تمام چیزیں کوئی فون کے اوپر, کوئی لیپ ٹاپس کے اوپر, کوئی اپنے آئی پیڈس کے اوپر, اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح لوگوں نے, اور گیمز بھی دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اب گیمز بھی وہ آ گئی ہیں جو اکیلے میں نہیں کھیلتے, ساتھ بیٹھ کے کھیلنے کے بجائے اب دنیا کے دوسرے کونے میں کسی بندے سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ آپس میں دوستیاں بھی کر لیتے ہیں, اسی طرح شادیاں رشتے بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ بیسک ہیومن انٹریکشن تو ہوا بھی نہیں اور لوگ انسانوں کے ساتھ نہیں چل پاتے. وہ اپنے, دیکھیے میں خود اس بات کی ایگزامپل ہوں, میرے ارد گرد 99% لوگ جو کہ بہت کوالیفائڈ ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, لوگ ان کے ساتھ ملنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, شادیاں کرنے کے لیے ترستے ہیں, اور ان کے ساتھ دوستیاں کرنے کے لیے, ان کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے, لیکن آپ یقین کریں ان میں سے کوئی بندہ, 99 کہہ رہا ہوں, 1% نکال رہا ہوں میں اپنی زندگی کے تمام لوگوں کو جن کو پچھلے 30-40 سال میں ملا ہوں, ان کے ساتھ کوئی بندہ نہ رہ سکتا ہے لمبا, نہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ وہ مسائل ہی ختم نہیں ہوتے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, پرانی بچپن کی چیزیں ابھی تک ہیل نہیں ہو پائی ہیں, بیسک جو ان کو اپنے بارے میں انفارمیشن جو ہے, اور کوشچن تک نہیں پوچھنا چاہتے لوگ. وہ ہر وقت ٹانگ دوسرے پہ رکھنے کے لیے, جو کام ان کو نہیں آتا اس کے بارے میں بھی سوال نہیں پوچھنا چاہتے, بلکہ فرم ہو کے اپنے آپ میں انہوں نے دماغ میں چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بہت مسائل ہو جاتے ہیں. لوگوں سے دوستی رکھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے, جاب رکھنا, بزنس کرنا, اپنے باس کے ساتھ لوگوں کی عجیب قسم کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں جو وہ پوری نہیں کر پا رہا, امپلائیز کے ساتھ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو وہ بیچارے نہیں پوری کر پا رہے ہیں. اس کے علاوہ دوستی میں لوگ, ٹی وی ایک بندے دو بیسٹ فرینڈز ٹی وی نہیں دیکھ سکتے ساتھ, کو ایک چینل چاہیے, دوسرے کو دوسرا چاہیے, کوئی صبر بھی نہیں کر رہا اور دوسرے میں بھی اتنا احساس نہیں ہے کہ اس کو بھی چیک آؤٹ کر لے کہ بھائی وہ کیا چاہتا ہے, یا اس وقت وہ کر لے بعد میں وہ دیکھ لے, یا اپنے اپنے ٹی وی کر لیں. اور اس کے بعد ایک گھر میں رہنے والوں کے جو مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ سب بچوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ سارے مسائل اور تکلیفیں, پریشانیاں, جب آپ جب خود کے ساتھ نہیں چل پا رہے تو اندر سے ہمیں پتہ ہے کہ نہ کوئی ہمارے ساتھ چل پا رہا ہے, نہ ہم کسی کے ساتھ چل پاتے. اور یہی پرانے زمانے کی فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا جس میں تمام لوگ لوگوں کے ساتھ چلتے بھی تھے, گھر کا ایک ایم بھی ہوتا تھا اور تمام لوگ اس کے حساب سے چلتے تھے, اس کے حساب سے سزا و جزا بھی ہوتی تھی, کیرٹ اینڈ اسٹک کا کانسیپٹ بھی ہوتا تھا, تو لوگ چل بھی جایا کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا, کوئی کسی کی کوئی مانتا نہیں ہے, جس آدمی کو جو کام آتا ہو, جس کی وجہ سے آپ اس کے گرویدہ ہیں, اس کی وہ بات بھی آپ نہیں سننا چاہتے, اس کی ایکسپرٹیز بھی آپ نہیں لینا چاہتے, اور اپنے ذہن سے زبردستی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں جی میرا نقصان ہو گیا. رشتوں میں جو لوگ ایکسپرٹ ہیں, جن کے امیکولیٹ قسم کے انسانوں سے رشتے ہیں, ان سے کوئی رشتوں کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ یہ کام کیسے کر رہے ہیں. لکی آدمی سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی ہر دفعہ آپ ہی کیسے لکی ہو رہے ہیں. فائنینشیل جو ایکسپرٹ ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کتنی فائنینشیل مینجمنٹ اتنی اچھی ہے, ہمیں بھی کوئی مشورہ دے دیں. ٹیکس والے لوگ ہیں, بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, ان سے لوگ نہیں پوچھتا چھپانے کے چکر میں. لائر سے لوگ کام کے ٹائم کے وقت میں کوئی چیز نہیں پوچھتے. ڈاکٹرز خود نہیں بتا پاتے اپنی فیملی کو, نہ وہ پوچھتے ہیں اور پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو علم کا کوئی استعمال نہیں ہے. یہ 9 to 5 صرف پیسے کمانے کے چکر میں, انسان کو جب آپ نے منی میکنگ مشین بنایا اور اس کو میننگ میکنگ مشین سے آپ نے ہٹایا, تو یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے, چاہے یہ اے آئی آئے یا نہ آئے. آگے کا جو زمانہ ہے یہ دن بدن مشکل ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان انسان سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا, اور ایک انسان کی اتنی خواہشات ہیں 50-60 سال کی عمر میں, جس میں سے 30-40 سال ہمارے گزر بھی جاتے ہیں, تو اگلے 15-20-25 سال کے لیے ہم عذاب اتنا चाहते हैं और सोचते हैं और इतना वरी करते हैं और इतना अगले बंदे के वी आर ब्रीदिंग डाउन द नेक्स, और इस तरह लोगों को हम डील करना चाहते हैं कि वो बेचारे कुछ उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमको क्या करना है। और इसी तरह अच्छे दिल और सबके पास ये, मैं तो बड़ी नीयत से मैंने तो इसकी हेल्प की, अरे भाई वो इस हेल्प के काबिल भी या था या नहीं, उसको ये पर्टिकुलर हेल्प आपसे चाहिए भी कि नहीं, और सच बोलकर सीधी बात भी कोई नहीं करना चाहता, और उसके बाद झूठ के ऊपर रिश्ते बनाए हुए हैं। हम एक हर बंदे ने अपने जहन में ना एक अपना एवटार बनाया हुआ है जो बड़ा ज़बरदस्त है, और वो ऐसा ज़बरदस्त है कि वो किसी के किसी काम का नहीं है वो, लेकिन वो अपने अंदर ज़बरदस्त भी है और कोई धेले का कंट्रीब्यूशन भी वो नहीं कर सकता, ना बिजनेस में, ना जॉब में, ना घर में, ना रिश्ते में, लेकिन उस जैसा कोई और है नहीं, और सबका रब से बेहतरीन रिश्ता है, कमाल, उन जैसा कोई भी नहीं है, और उनको फिर एक और कमाल बंदा चाहिए, वो कमाल बंदा जो उनसे कंपैटिबल हो, जिसके एक्चुअल में वो काबिल नहीं होते। तो ये सारी इक्वेशंस वैसे ही तकलीफ और परेशानी की तरफ जा रहे हैं, इससे एआई का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा एक छोटा सा काम है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रेडियो का एक छोटा सा हमारा काम है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे एफएम स्टेशन है, एएम स्टेशन है, अब दुनिया जो है वो सारी की सारी ग्लोबल विलेज है, तो तमाम रेडियो स्टेशन को अगर लेख लिया जाए, कहीं से भी कोई रेडियो स्टेशन खुल जाए, इस स्टेट में खुल जाए, इस शहर में खुल जाए, हमारे साथ वाले दफ्तर में खुल जाए, यू नो ऑफिस बिल्डिंग में खुल जाए, मुझे कख फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक काम है, मैं उस काम को किसी मकसद से, किसी विजन के ऊपर चलाता हूँ, इसमें काम करने वाले लोग किसी मकसद से यहाँ आते हैं, इधर किसी के कोई कॉम्प्लेक्सेस को कि कोई यू नो कोई डर्टी क्लॉथ्स जो हमारे क्लोथ्स हैं उनके धोने की कोई जगह नहीं है। हम तमाम लोग मुख्तलिफ मज़ाहे, मुख्तलिफ रंग नस्ल से भी अगर हैं, कम्यूनिटी से भी मुख्तलिफ हम अगर रखते हैं ताल्लुक़ अपना, तो यहाँ पर यहाँ सब महमूद याज में सब बराबर हैं, मर्द हैं या औरत हैं, गलत काम करेंगे उसकी एक सज़ा है, अच्छा काम करेंगे उसकी एक जज़ा है, उसका एक रिवॉर्ड है, कोई फेवरेट नहीं है, जो उस कंट्रीब्यूट कर रहा है उस मकसद की तरफ वही हम सब का फेवरेट है, जो उसके ख़िलाफ़ जाता है अगर वो ये समझता है कि मैंने पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा छोड़ तो चांस देता हूँ, मैं जैसे अपने घर में देता हूँ, जैसे खुद को देता हूँ, वैसे आपको भी देता हूँ, तीसरी दफ़ा मैं किसी को चांस नहीं देता ज़िंदगी के इस मौके पर आके, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल बचपन में किसी सयाने ने एक मिसाल से, जिसको जो अब लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो सही मिसाल थी, कुत्ते की दुम को 100 साल भी नली में डाल के रखें तो वो टेढ़ी ही रहती है अगर वो टेढ़ी है, और जो चीज़ सीधी है वो सीधी है। तो ये मिसाल इतनी अच्छी है कि किसी सही बंदे ने सच बताई थी, लेकिन आजकल के ज़माने में क्योंकि यूफेमिज्म और ये और वो और अजीब अजीब किस्म के हमारे ड्रामे, लेकिन जो बात जैसे मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, एंड रिज़ल्ट हमेशा वही निकलते हैं। 20 साल हो गए मुझको, एक बंदे ने सरप्राइज़ नहीं दिया, जिसके बारे में जैसे सोचते हैं, जैसे समझते हैं, जो इवेंट्स आर लीडिंग अप टू अ सर्टन कंक्लूजन, ह्यूमन बीइंग्स देयर नेचर, दे आर लीडिंग अप टू समथिंग विच बिकम्स देयर फेट, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज़। और जितने आप होश में रहेंगे, इंसान होने की कैफियत आप पर ज़्यादा तारी रहेगी और हैवानियत की कम से कम रहेगी, उतना आप रिश्ते मामलात हालात में कंड्यूसिव फैसिलिटेटर होंगे, आसानी पैदा करेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। आप अगर सोने के भी बने हैं, आप अगर मुअल्लिमुल अव्वल भी हैं, ठीक है, मुअल्लिमुल अव्वल, मुअल्लिम टीचर, अव्वल पहला टीचर, यानी कि आप अगर अरस्तु भी हैं ना, तो या सुकरात भी हैं, तो किसी से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप सिर्फ तकलीफ़ और परेशानी देंगे लोगों को। एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, इंडिविजुअली एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, इमीडिएट फैमिली में एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, एक्सटेंडेड फैमिली में एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इट्स अ स्लो प्रोसेस। लाइक माइंडेड लोग आपको आराम आराम से मिल जाएंगे, जल्दी करने की, पागल होने की, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की, डेस्परेट होने की, नीडी प्ले करने की, या जो चीज़ें आपको चाहिए वही कह के कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कहकर, या मेरा तो ये मकसद नहीं था, या मैं तो ये नहीं कहना चाह रहा था या रही थी, इस ड्रामे से आप बाहर निकलें, टू द पॉइंट स्ट्रेट बात करें, जो चीज़ आपको चाहिए। बाज़ार जाते हैं तो क्या उसके साथ आप इतने ड्रामे करते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, ये चीज़ दे दीजिए, ये चीज़ ले लीजिए। रिश्तों में भी आप इसको सिंपल जितना रखेंगे उतना आसान होगा। रब के साथ भी मामलात को अपनी मर्ज़ी पर रब को चलाने की और दीन को चलाने की कोशिश करने के बजाय, जिसने आपको पैदा किया है और जिसने ये चीज़ आपके लिए बनाई है उस पर ध्यान दें, ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी।
1: जी मैं इस पे ये भी कहूंगी कि हमने आज पीटरी डिश में मीट प्रोड्यूस कर लिया है, यानी बायोलॉजिकली, तो जब वो बियॉन्ड बर्गर्स और वो बने, तो इसी तरह क्या, मतलब मैं सिर्फ एक फर्जी सवाल है ये कि अगर हम बायोलॉजिकल बॉडीज दे देंगे एआईज को, और जिस तरह आज हमारे दरमियान रिसर्चर साइंटिस्ट आलिम मौजूद हैं और अमीर उमरा मौजूद हैं, तो जो निचला तबका है उसको हम, मतलब उसको हम घटिया सुनते, घटिया मानते हैं या घटिया नजर से देखते हैं. डोंट यू थिंक कि एआई के पास इतनी इंटेलिजेंस होगी और इतना पावर होगा कि अगर वो बायोलॉजिकल बॉडी में आ गए तो वो इंसानों को भी उसी नजर से देखेंगे जो बड़े लोग देखते हैं जो छोटे लोगों को, और क्या उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस बढ़ता जाए? डू यू थिंक कि एक जमाना ऐसा आएगा या इससे पहले ही ये सब चीजें दरम बरम हो जाएंगी?
0: देखिए, इसमें आपके दो सवाल आते. पहले ये तो आपने कहा कि आर्टिफिशियल जो ना मीट जैसे पैदा कर लिया गया है. अब ये जब इस किस्म की कोई भी चीज जब आर्टिफिशियल पैदा कर ली जाती है, तो साइंस हमें ये बावर कराने की कोशिश करती है कि जो बियॉन्ड बर्गर बनाया गया है वो एग्जैक्टली बर्गर की तरह लगता है, टेस्ट भी करता है मीट की तरह, लेकिन वो उसमें वो तमाम चीज़ें जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई हैं वो कभी भी बॉडी उनको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करती. नंबर जब ये निकालते हैं कि इसमें हमने इतने प्रोटीन डाल दिए, इतना हमने इसमें कार्ब्स डाल दिए, इतना हमने फ्लान डाल दिए, ये सारे नंबर्स ठीक हैं क्योंकि ये किसी कानून के तहत, फार्मूला के तहत निकाले जाते हैं. लेकिन फिर ये कहते हैं, यही डॉक्टर्स, यही लोग सब तमाम ये कहते हैं कि जी ये जो एक रेगुलर मुर्गी का अंडा होता है, ये इसके अंदर एग्जैक्टली वही तमाम चीज़ें जो कि एक पैस्चर रेस्ड ऑर्गेनिक एग के अंदर होता है. तो क्या फिर लोग पागल हैं जो $10 का के 12 अंडे खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ $1.50 या $2 के वो 12 अंडे खरीद रहे हैं? यू गेट वॉट यू पे फॉर. तो अगर हम समझना शुरू करें इन तमाम चीज़ों को, कि इन तमाम चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है. डॉक्टर्स, एक सर्टन अमाउंट, जब आप एक हेल्दी फैट और एक अनहेल्दी फैट, कैलोरीज वही होती हैं लेकिन बॉडी उसको कैसे प्रोसेस करती है, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है. फिर फैट्स शुरू हो जाते हैं, एकदम बिलियंस ऑफ डॉलर जब इन्वेस्ट होते हैं कि एक इंडस्ट्री की तरफ से, तो लोग जो हैं वो वीगन होने की तरफ या वेजिटेरियन होने की तरफ या किसी और तरफ शुरू हो जाते हैं, और ये फिर एक डिबेट चल जाती है, और उसके बाद लोग इस पर ऐसे डिबेट कर रहे होते हैं. उस दिन एक मैं आपको एग्जांपल भी थोड़ी सी बताऊंगा. हम जकूजी में बैठे हुए थे तो वहाँ एक दो मेहरबान लोगों के साथ हमारी क्या डिस्कशन हुई, और कई जो नए लोग के बच्चे हैं वो बात करते हुए भी डरते घबराते हैं क्योंकि यहाँ पे हर बंदे कहते हैं जी आप अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिएगा इन चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो एक तो ये जो हमें जो भी बावर कराने की कोशिश करते हैं, पहले कहते थे जी मार्जरीन बड़ी अच्छी चीज़ है, बाद में कहा जी नहीं वो नहीं ठीक. दवाइयाँ गोलियाँ वो देते हैं जो कहते हैं ये परफेक्ट हैं, और बाद में कहते हैं अगर इससे कैंसर हो गया तो आप हमें बताइए, हम सू करते हैं. तो ये प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ वंस इग्नोरेंस है. स्लो एंड ग्रेजुअली आपको आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है पूरा इवॉल्व करने का, जिसमें इंसान बहुत सारी गलतियाँ करता है, और बिलियनर्स को और इंडस्ट्री को पकड़ने वाला कोई होता नहीं. जिस तरह ये पैसे इंजेक्ट कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, तो दे कैन गेट अवे विद इट, लेकिन नुकसान हो जाते हैं. इसलिए हमको ख्याल रखना है कि हमको मॉडरेशन में चीज़ें करनी है, और एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है वो हमने खाने, और नेचुरल और ऑर्गेनिक जितना हम हो सकते हैं उतना रहना है. नेचर से जितना करीब रहेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी. अब ये दूसरी बात कि अगर वो बायोलॉजिकल एआई जो है वो बायोलॉजिकल फॉर्म में आ जाती है तो क्या वो ह्यूमन बीइंग्स को इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं? एक हद के बाद वो नहीं कर सकते. इन जितना मर्जी डाटा आप किसी को दे दें, ठीक है, इंसान कितना दिमाग इस्तेमाल करके किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है जिसके ऊपर वो मुल्क चल रहा होता है, फिर कुछ अरसे के बाद जब वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, तो उसकी अमेंडमेंट्स की जाती हैं, उसके भी एक प्रोसेस है, एक तरीक़ेकार है, और फिर उस अमेंडमेंट्स की भी फर्दर अमेंडमेंट्स की जाती हैं क्योंकि अनफोर्सीन आगे आने वाले हालात, मामलात, वाकयात, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए चीज़ों को चेंज किया जाता है. बिल्कुल इसी तरह अगर बहुत खूबसूरत मर्द आपने बना लिया, ज़बरदस्त जो है विजुअली बहुत खूबसूरत है, एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत है, अब मर्द है या औरत है, बहुत कमाल है, तो चार्ज किस चीज़ से हो रहा है? वो चार्ज ही जब उसको नहीं मिल रहा है, एक वक्त के बाद वो मशीन बन जाएगा दोबारा से. तो बिल्कुल इसी तरह ये आपका बात है कि ये जो क्योंकि हम वी लुक डाउन अपॉन पीपल, जो कि लोगों की कोई अचीवमेंट्स नहीं होती या जिनकी कोई फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ्स नहीं होती या कोई ऐसी एबिलिटीज़ या वो एसेट्स नहीं होते, तो हम भी उनको उस नज़र से देखते हैं। तो क्या एआई के जो आगे इन्हेंस्ड रोबोटिक्स जब शुरू होंगी तो उसमें वो लोग हमें भी ऐसे डाउन लुक डाउन अपॉन करेंगे फिजिकली? तो मतलब एक लोहे की बनी हुई चीज़, एल्यूमिनियम की बनी हुई चीज़ और एक हड मास का बना हुआ जो बंदा है, उसके बीच में कोई कंपटीशन है नहीं, लेकिन बनाया इसी के ब्रेन ने है उसका। एक चीज़ को जो मग अप की हुई एक चीज़ या उसके सिस्टम के अंदर है, वो बड़ी जल्दी रिप्रोड्यूस तो कर सकती है, लेकिन जब सिचुएशंस आएंगी, चीज़ें आएंगी, इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड गन जिसके लिए लोग मर रहे होते हैं कि जी ये जर्मन गन होनी चाहिए, अमेरिकन गन्स होनी चाहिए, और ये मेटलर्जी में स्ट्रॉन्ग है, एक्यूरेसी में ये हैं, फ्लां हैं, उसके बाद इसकी जो है ना बहुत सारी और चीज़ें होती हैं गन्स के बारे में। तो अब वो मैटर कर रहा है या फिर अगर ये क्यों होती है, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स, क्योंकि आखिर में बात हमेशा मैन या वुमन पे आ जाएगी। तो घबराने या डरने या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी एक जगह बनानी है। इंसान औरतों से देखें, वो आपने अक्सर देखा होगा जिस औरत की या मर्द की डिवोर्स हो जाती है ना, उसके इर्द गिर्द का जो क्लोज सर्कल होते हैं ना, वो शुरू में तो बड़े सिंपथेटिक होते हैं और बाद में सबको गश पड़ने लग जाते हैं कि ये लेडी जो है अच्छी कबूल सूरत या अच्छी शक्ल सूरत की है या बहुत अच्छी है, मैनरिज्म बड़ा अच्छा है, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, एक मिसहैप उसके साथ हो गया। सबसे पहला टेंशन जो दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड को होती है ना, वो अपने शौहर को उससे दूर करें। मैं आपको कुछ ऐसी रियलिटी की बातें बताता हूँ जो आप लोगों ने सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आप ये सारे राज कब्र में लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरा ख्याल है कोई हिसाब किताब है ऐसा जिसमें वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा आपका, या आपने वोटों में खड़ा होना है, और बिहेव हम ऐसा करते हैं और फिर हम इलेक्शन में भी नहीं खड़े होते। लेकिन ये मेरे बहुत सारे लोगों हंड्रेड्स ऑफ द स्टोरीज दैट आई हैव वो इसी तरह के हैं, और इसी तरह को मर्द इस तरह का है जो स्टैंड आउट करता है ग्रुप के अंदर, तो वो अगर उसकी डिवोर्स हो गई है तो बाकी लोग अपनी भाभियाँ उनकी जो हैं और बाकी चीज़ें, हालांकि उनकी तरफ ना ऐसा किसी का ध्यान होता है ना ऐसी कोई बात होती है, लेकिन लोगों को आपाधापी पड़ जाती है। सो ये तब होता है जब आपने अपना काम नहीं किया होता। कोई भी इनसिक्योरिटी सिर्फ तब आपके दिल में घर करती है जब आपने अपना काम नहीं किया होता, या आपने एक सिस्टम नहीं बनाया होता, या आप अपने पार्टनर को जानते नहीं होते कि वो क्या उसमें ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से वो आपका पार्टनर और अभी तक है। ये शाख नाजुक पे जो हमने आशियाने बनाए होते हैं, जिसको हम घर समझते हैं, जिसको हम रिश्ते समझते हैं, जिसको हम बिजनेसेस समझते हैं, हमको ये खेल नहीं खेलना भैया। ये खेल मतलब इर्द गिर्द हर बंदा खेल रहा है और वो बेइंतहा मिजरेबल है। जर्द रंग के पीले शक्लों वाले वो भाईजान जिन्होंने एक सोसाइटी में किसी एक स्टेटस को क्वालिफाई करने के लिए और अपने आप को एक पेडिस्टल पे रखने के लिए इतना बड़ा टास्क जो है ना, इनसरमाउंटेबल किस्म का एक पहाड़ जो चढ़ा ही नहीं जा सकता, अपना टास्क ले लिया है और वो मरे चला जा रहा है। और उन बच्चों के लिए जो उसने सोसाइटी के लिए पैदा किए, और उसके बाद अब उसके फंड्स, पहले तो एजुकेशन पे उसकी जान जाती थी, उसके बाद उसने वो कर लिया, अब वो बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं या उसको पूछते भी नहीं है, ऐसे माँ बाप जो हैं वो उनको और इंजेक्ट किए जा रहे हैं पैसे और उनको और बनाए चले जा रहे हैं कि ताकि और मिल के और पावरफुल होकर आपको मारें। तरस आता है मुझको, ठीक है, कयामत के डर तो बहुत बाद की बातें हैं। इसी दुनिया में लोग दोजख में रहते हैं, घर की दोजख में रहते हैं, लोग अपने बिजनेस में जाते हैं, वो अपने पार्टनर से उनकी रूह कांप रही होती है। क्या मतलब इस बात का, आपने काम नहीं किया, आप सुबह उठते हैं अपने घर में आप सुकून में नहीं है, थके हुए हैं, आप अपनी बेगम से अपने शौहर से बात करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि आप दो लोग हैं जो एक बंदा था, अब दो हैं, दोनों खुशी से मिल के दुनिया के किसी भी मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। अगर दोनों की फैमिलीज में भी कुछ बलाएं हैं तो उनको भी काबू किया जा सकता है, बिकॉज आप एक हैं। इसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए, मेरी माँ आगे तो ऐसे ना हो जाए, उसकी माँ आगे तो ऐसे ना हो जाए, फलां इस किस्म की जो कमज़ोर बीमारियाँ और रिश्ते जिनको हमने नाम रखा हुआ है ना, आपको लगता है रब आपसे ये चाहता था कि आओ दुनिया में सिर्फ जाके पैसे कमाओ और ये सास बहू और बेटा बेटी और माँ बाप और मियाँ बीवी का ये खेल खेलते रहो और इसी में देसी बंदे चुर मुर हो जाओ आपस में? हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना, ये एक जो फैमिली ड्रामा है ना हमारा, इस ड्रामे को डील करने में हमारी सारी प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। हम एक घर को ही, इन्हीं सियासतदानों को जो घर में हमारे पैदा होते हैं, जो गली में कहीं जिनकी ज़रा इज्जत नहीं होती, कख इनको दुनिया का नहीं पता होता, ना इन्होंने कोई बिजनेस किया होता है, ना इन्होंने कोई पैसे कमाए होते हैं, ना इन्होंने लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन करके रिश्ते संभाले हुए होते हैं, लेकिन इन्हें सब पता होता है। ये अकलमंद होते हैं, और जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो दुनिया को डील कर रहे होते हैं, वो कम अकल होते हैं। अब जिसको ये अकल की मार पड़ी हो, जिसको ये मत इतनी मारी गई हो, आप उनका क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसी तरह पढ़े लिखे लोगों के जो हाल है, आप यकीन करें, मैं गांव से हूं, हमारे गांव के अनपढ़ लोग, मैं 90% जिन पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं, उनसे 10 गुना बेहतर है, मर्द भी और औरतें भी, बेसिक फोक विजडम के ज़रिए, बेसिक घरों में जो चीज़ें देखकर कई लेडीज़ और कई जेंटलमैन जो हैं वो इतने अच्छे फैसले करते हैं, उनकी नस्लें संवर जाती हैं। और पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग कहना चाहिए, वो रोज़ अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर लेते, मुश्किल से कमाया हुआ पैसा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, जज्बाती ड्रामे की वजह से, या कीपिंग अप विद जॉन्स की वजह से ज़ाया कर देते, अपनी एनर्जीज़, अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात, उनको पता ही नहीं होता। हम लोग चैलेंज्ड हैं, हम लोग लाइफ से चैलेंज्ड हैं बेसिकली। जैसे मेडिकल कंडीशन होती है ना, हमें लाइफ की कंडीशन के अंदर हमारे बहुत बुरे हालात, और हम किसी से ना सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना अपनी कमज़ोरियों से सीखना चाहते हैं। हर बंदा झूठ बोलता है कि वो बड़ा आसान है, वो तो किसी के साथ भी चल सकता है, वो तो हस्बैंड बनने के लिए कमाल मटेरियल है। कोई लेडीज़ वाइफ बनने के लिए अपने आप को बस मटेरियल ही समझती रहती हैं, इस मटेरियल के साथ ही वो सारी ज़िंदगी इस तरह की चली जाती है। कुछ लोग अपने आप को बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, फ्रेंड के दुख के का उनको एहसास ना होता है, ना कभी होगा। मुझे आपसे, मेरे को बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है, अक्सर मेरे दोस्त वगैरह मुझे कभी कभी कहते हैं ना, मेरा ख्याल है आपकी इस चीज़ में बड़े हाई स्टैंडर्ड है, तो मेरा जवाब होता है, अगर मेरे हाई स्टैंडर्ड होते तो आप मेरे दोस्त होते, आप रोंदू हर वक्त के मेरे दोस्त होते, आप जिनका कोई मसला सीधा नहीं होता, ये दोस्त होते। तो कोई हायर स्टैंडर्ड नहीं है, आप बेसिक सा स्टैंडर्ड है। क्या आप अपने जिस्मानी, जहनी, रूहानी खर्चे खुद उठा सकते हैं? क्या आप अकेले में सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आप अपने थॉट से अपने आप को तो पागल नहीं किए जा रहे? क्या आपका अपने ऊपर काबू है कि नहीं? क्या आप कोई भी कमिटमेंट करने से पहले सोचते हैं कि आपके पल्ले कितने धेले हैं, और इस मेले में जो आप जा रहे हैं उसमें आप कुछ कर पाएंगे? किसी भी इंसान को जब आप सोचते हैं कि आप उनके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो क्या सोचते हैं आप कि वो कौन है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप कौन है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ये कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। क्या आप ये सोचते हैं कि जी इंसानों के साथ, इन लोगों के साथ इनसे सीखा जा सकता है, तो इनसे इतना ही रिश्ता रख लिया जाए, ये जो बंदा है, ये बंदी, इनके साथ अपनी इमोशनल किस्म की ड्रामेबाजी के बजाय एक लॉजिकल सा रिलेशनशिप भी रखा जा सकता है, कोई कैथार्टिक कैथारसिस हो अगर किसी बंदे से बात करके, या उसके साथ मिलकर कोई अच्छी एनर्जी आप लेके तो फिर अपनी ज़िंदगी में जाके उसको डील कर सकें। हमें कुछ नहीं पता है। 40 साल तक मैं अपनी ज़िंदगी में चुप रहा कि यार शायद मैं ही सही नहीं सोच रहा, इन तमाम लोगों को बहुत कुछ पता है। फिर क्या हुआ, फिर जिस कारपेट को ऊपर रख कर लोगों ने छुपाया हुआ था अपने आप को, वो जगह जगह से मट्टी दिखाने शुरू हो गया, और उस कारपेट के बेड़े गर्क होने शुरू हो गए। कोई लोगों के जहनी मसाइल सामने आने लग गए, कुछ के जिस्मानी आने लग गए, कुछ के फाइनेंशियल मसाइल सामने आने लग गए, और कि रूहानी तो हम खैर रू नॉर्मली वेन एवर वी टॉक अबाउट सोल, तो मेरे दोस्त कहते थे ब्रदर यू जस्ट लॉस्ट मी एट सोल, तो वो तो बहुत बात की बात है। बेसिक जो चीज़ें कुछ नहीं कर पाते, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वो अपना बनने वाला कोई आदमी हमें नज़र नहीं आता। हर चीज़, या पता नहीं हम कौन सी कोई जज्बाती बीमारी का शिकार है, या वो जो अमेज़ॉन के जंगलों में जो बैक्टीरिया है ना, जो यू नो बंदे के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके माइंड को कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर लेता है, वो क्या नाम था उसका, ओफियोकोडिसेप यूनिलैटरलस। बिल्कुल उसी तरह मुझे लगता है कोई हमारे कुछ, हम ऐसे कॉन्ड हुए हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको समझ आ रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
16: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड پہ جا سکتے ہیں مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001237474 court.org.uk।

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
0: अस्सलामु अलैकुम। आप डॉक्टर फरहत हाशमी की तालीम और तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स समाप्त फरमाने जा रहे हैं।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली।
3: दूसरा पारा आयत नंबर 142 से।